0: सेम सोला खितुल भन्नासमे
1: याउचुस
0: रंगे गोंदा लबा ने तोदा के थन लिना बेमाते नेसी बंगदा न्यानास जेमा रंगे थेंदो रुंग अरबचेना जानला लारिया युदु केवे वांगचे सोरचा सिकुमासे 你也是的用着行